0: नमस्कार, जय मिथिला जय मैथिली। सिडनी सहित ऑस्ट्रेलिया, भारत, नेपाल आ दुनियाक अलग अलग भाग में सुन रहल समस्त मैथिल एवं मिथिला प्रेमी श्रोतागण के हमर सादर प्रणाम। अहाँ सुन रहल छी मिथिला गुंज, द वॉइस ऑफ मिथिला इन ऑस्ट्रेलिया, केवल 2000 98.5 FM पर। हम छी अहाँ के अपन शिशिरेंदु झा। आई स्टूडियो में हमर संग उपस्थित छथि कार्यक्रमक दुनू आदरणीय गेस्ट, श्रीमान अविनाश कुमार जी और श्रीमती ममता कुमारी जी। अविनाश जी, ममता जी, मिथिला गुंज में अहाँ दुनू गोटे के हार्दिक स्वागत है।
1: नमस्कार शिशिरेंदु जी, और सब श्रोतागण के सेहो नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के शिशिरेंदु जी के फैन से हमर सबके बुलैली।
2: नमस्कार सब गोटा के, और बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जर्नी जे अपन संस्कृति और परंपरा के बारे में बात करो के छे, हमेशा इमें भाग लेको बहुत भाग्यशाली मान रहल छी अपना आप के, एकरे लेल बहुत बहुत धन्यवाद
0: अहाँ के। हमर सबके सौभाग्य से है जे अहाँ जका दोनों विशेष ज्ञाता मिथिला संस्कृति और इतिहास के विषय में हमरा संगे छी, जे पिछला सप्ताह से हम सब मिथिला के इतिहास के विषय में कुछ बातचीत कैलों, और वही चर्चा के हम सब फेर आगा बढ़ाब। तो जना अपने सब जने छे जे मिथिला कल्चरल सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में 3 दिन के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहल छथि, जैमे मिथिला महोत्सव हेतु या दुर्गा पूजा हेतु, माँ जगदम्बा के पदार्पण सिडनी के धरती पर भ चुकल छ। 3 दिन के प्रोग्राम में हम सब मिथिला महोत्सव करब 17 अक्टूबर का, 18 अक्टूबर का हमर सबके प्रोग्राम रहा, जैमे पूजा, कन्या पूजन, खोज भरनाए मिथिला सबके, मैथिलानी सबके, और 19 अक्टूबर का माता के हम सब बहुत भारी मन से विदा करबें। अही सिलसिला में अपने सबके यदि कोनो प्रश्न हुए तो वेबसाइट पर अपने सब देखियो www.mithilaculturalsociety.au। कोनो प्रश्न अपने सबके पास यदि है, हमरा से जुड़ा चाहे छी, तो अवश्य फोन करूँ 0426-395-298। फिर से हम रिपीट करे छी 0426-395-298। हमरा संगे जुड़ चुकल छथि खुशी झा से हो।
3: नमस्कार सब गोटे के।
0: तो ऐसे पहने कि हम सब शुरुआत करी, आओ एक भगवती के गीत सुनल जाए सब गोटे मिलकर, और एक बात से हम सब फिर एक कार्यक्रम के शुरुआत करें।

0: जगदम्बाघर में जयरा बाहर एली है। ये गीत हमार और हमारा विश्वास है जो बहुत अपने सब अपन बचपन में सुनने हेबे अवश्य कई बेर माता जी जान हमारे पूजा करे छलखिन हैं तो ये गीत अवश्य गुनगुनाबे छलखिन हैं। तो ऐसा बहुत पर्सनल एक हमारा भावना जुड़ल है। चलो अगर बात करे छी तब जना पछिला बेर हम सब बात कलूँ मिथिला केना बनल, मिथिला के इतिहास की भेल, मिथिला के नाम मिथिला केना पड़ल, ओमे अविनाश जी कहलखिन जे मिथी नाम के एक राजा भेलखिन हर नाम से मिथिला बनल। और प्रत्येक व्यक्ति जो सुन रहा छी जे क्यों छी हम सब हर व्यक्ति मैथिल छी, क्या कि हम सब हर व्यक्ति पलक झपकबै छी और पलक झपकाबे के जे क्षण होइ छै जाहिमे पलक झपक के उठि जाइ छै ओकरा कहल जाइ छै निमिष। और वह ओ निमिष महाराज निमि के नाम पर पड़लै जे मिथिला के सर्वप्रथम राजा मानल जाइ छथिन। तो अब एहि चर्चा से हम सब आगा बढ़ै छी। जेना पिछला बेर विदेह के बात केलिए, राजा जनक के नाम से विदेह छनि, जे राजा शिरध्वज रहथिन जे माता जानकी के पिता जिनका कहल जाइ छनि ओहो विदेह भेलखिन। हुनका विषय में जे छै से किछु अपने प्रकाश डालियौ जे जे जे राजा जनक के एतेक महत्व किया देल जाइ छै मिथिला में।
1: देखियौ सबसे पहले तो ई बात छै कि जनक एगो टाइटल छलै, जेना आइ काल्हि के जमाना में मिस्टर एगो टाइटल छै, तो ओनते एगो जनक जी एक टाइटल छलै। उनकर असली नाम छलै शिरध्वज और उनका भाई के नाम छलै मकरध्वज। तो ई दुनू टाइटल बन के जैसे उनका उनके आगे जे भेलखिन उनकर पुत्र भानुमान।
0: अच्छा।
1: भानुमान जनक उनकर नाम मिले।
0: नया नया इन्फॉर्मेशन है सब गोटे के लिए जे जनक हाँ। के पुत्र या जनक के उत्तराधिकारी कहियो, क्या कि पुत्र तमरा पता है जो डेट ऑफ दूटा
1: उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी जे ले अथि अडॉप्टेड छलखिन।
0: वाह।
1: तो उनका नाम छले भानुमान। और लास्ट जे चलले ई परंपरा जे चलले ना ओ कीर्ति जनक तक चलले। लास्ट जे राजा भेले ओ कीर्ति जनक इतिहास में एहन मानल जाय छै कि ओ ओते बढ़िया राजा नहीं भेलखिन, लोग सबके ओते सम्मान नहीं कलखिन, थोड़ा बहुत जे एहन कहल जाय छै कि लोग सबके साथ अत्याचार कलखिन, टैक्स वगैरह से ज्यादा लो लेलखिन, होत एहन टाइप के कोनो प्लान भेलै। तब बात जे छलै तहिया तक ते ई जे है ना ई सिस्टम चललै कि जे जे राजा बनतै ओकरा जनक कहल जेतै वहाँ पर, बुझलिए ना, से सिस्टम रहलै। ओही के समय के जे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात छै जे हम अहाँ सबके बारे में बताबे ले चाहे छी, राजा जनक जी ई फेमस अयले छथिन कि ओहि समय में विद्या के बहुत ही ज़्यादा सम्मान कल गेलै, विद्वानों के एक पूरा जे सिस्टम बनेल गेलै, वहाँ पर सिर्फ पुरुष लोग ही नहीं विद्या ग्रहण कलखिन, एहिके अलावा बहुत सारे विदुषी भेलखिन, मैत्री गर्गी ई सब जे बहुत ही फेमस नाम छलखिन, याज्ञवल्क जे ओहि समय के बहुत बड़का फेमस फिलोसफर भेलखिन। तो एहि सब पर जे है हम सब ना चर्चा करबै। और
0: तो ई अहाँ जे कहलिए अविनाश जी तो बहुत बड़का इन्फॉर्मेशन छै, कियाकि लोग सब जनक आरो विदेह तक आबि कऽ हुनका सबके नहि पता चलै छनि जाइके बाद की भेलै। और जेना कहल जाइ छै कि बहुत सारा लोग सब या पॉलिटिकल जे अरेना छै ओहिमे लोग सब बात करै छथिन जे ई सब एकटा माइथोलॉजी छलैए, धन अपना पास अहाँके पास पूरा कर
1: हिस्टोरिकल रिकॉर्ड
0: छै और एविडेंस छै,
1: बिल्कुल
0: कहनाइ बहुत गलत बात छै जे ई मात्र एकटा माइथोलॉजी छै।
1: इतना ही नहि, सब ओहो से बड़का बात आई ई मन से हम कहे ला चाहे छी और बहुत लोग के पता होते कि जे मिथिला आई के बाद जे कीर्ति जनक जे लास्ट राजा भेलखिन, तो क्वेश्चन उठे छै कि जे इस देश केना चललै, तो ऊ ओई के बाद विभाजित भ के एक छोटा छोटा गणराज्य बन गेलै। और एक समूह ऑफ एट जे छोटा छोटा जनपद भ गेल ओकर एक कम्बाइंड कंट्री बनलै, और ओकरा जे है कि ओही के हिसाब से देह चललै, जाहिमे कि लिच्छवी विदेह ई सब एक मेन राज्य जनपद भेल, और सबके मिला के एक गणतांत्रिक व्यवस्था शुरू कयल गेलै, और ई पूरे दुनिया में सबसे पहला व्यवस्था शुरू कयल गेल छै।
0: तऽ श्रोतागण अपने सब यदि कॉपी पेन लगा बैसल छी तऽ अहाँ सबके ऊपर में जे इन्फॉर्मेशन है ओकर बम्बार्डमेंट भ रहल है, अहाँ एकरा सबके लिखत रहू। और एकटा क्विज हम बहुत जल्दी अपने सबके लेल लावा जा रहल छी और एक क्विज के विजेता के भेटत आवा वाला दुर्गा पूजा में दू गोटे के डांडिया के टिकट।
1: वाह,
0: अहाँ सब तैयार रहू, बहुत जल्दी अहाँ सबके सामने में एकटा क्विज आवा जा रहल है। तबना जी कहलिए जे गणतांत्रिक व्यवस्था संपूर्ण विश्व में के जे प्रारंभ भेले से मिथिला से प्रारंभ भेले, ई एकटा बहुत गर्व के बात छै। हमरा सबके सुन के बहुत गर्व भ रहल है जे हम सब अई अथि में अई लीग में हम सब हमेशा से आगा रहलौं, अग्रणी रहलौं है। तो ई बहुत बड़का चीज छै। अहियो कहलिए जे जे जे गणतांत्रिक व्यवस्था रहे ओहिमे 11 गण जनपद भेले, ओहिमे मेन की रहे, ओहिमे मेन जनपद जे रहे से
1: विदेह लिच्छवी ई सब भेल जकर नाम छै अभी का
0: और वैशाली में। हाँ, पहला सीट रहे जतय से ई एहि तरह के व्यवस्था कयल गेलै।
1: हाँ,
0: जे छै से फर्स्ट जे जे मेजोरिटी में छथि हुनकर सरकार बनते,
1: सरकार बनते प्लस कोनो डिसीजन होते तो ई 8 जे जनपद छले उन सब के कंसीडरेशन कैल जते, उनकर पॉइंट ऑफ व्यू देख कर एक क्यूमुलेटिव डिसीजन लेल जते, एहन तरह के सिस्टम बनेले। और ई पूरे विश्व ऐसे पहले एनआर के एगो की कहै छै एगो राजा वाला जे होइ छै सिस्टम से छले।
0: अच्छा।
1: पहले एकटा राजा छथिन और उनके सर्वे सर्वा छै। ई बात अलग छै कि ओहि जनक जी के दरबार में बहुत सारा विद्वानों के एक कमिटी रहै छलै जे हमेशा एक जे सही सलाह दै छलखिन और हमेशा एहि पर बात भेलै।
0: बहुत नीक बात कहलियै। एकटा चीज अहाँ चीज इहो कहने छलियै जे जनक जी के दरबार में विद्वान सबके विदुषी सबके जे छै से काफी सम्मान रहनि। ओहि विदुषी के क्रम में अहाँ नाम लेलियै गार्गी, मैत्री और भारती। भारती दाला के बाद में हमरा पता है तो
1: मैत्री और गार्गी जी छलके।
0: हाँ, तो ममता जी से पूछबेन जे जे ई आई के जे फेमिनिज्म के हम सब बात करे छी आई के परिप्रेक्ष्य में, और एमे हम सब बात करे जाय छी कि महिला के सम्मान भेटबाक चाही, महिला के इक्वालिटी के अधिकार भेटबाक चाही, लेकिन ई चीज तो पहिने से छलै है। ई चीज तो विद्वान के समकक्ष विदुषी सब बैसे छलखिन दरबार में।
2: बिल्कुल,
0: कत्तो हम सब चूक गेलौं, ओहि परम्परा के हम सब किया नहीं आगा बढ़ा पेलौं।
2: बिल्कुल, अगर आई के लेल देखल जाए तो आई बात बहुत ही ज़्यादा जोर शोर से कहल जाए छे कि वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति, बेटी पढ़ाओ और अलग अलग तरीका के नारा देल जाए छे कि जे नारी के लेल किछ कहल जाए, जैसे हुनका सशक्तिकरण हुए, वो पढ़थिन, शिक्षा ग्रहण करथिन, आगा बढ़थिन, पुरुष से बराबरी करथिन। लेकिन ई सब चीज़ अपन समाज में, अपन परम्परा मिथिला में बहुत शताब्दियों पहले से रहलिए। जेना कहलिए किछ नाम कहल जाय छै लेकिन ई ओते तक सीमित नहीं रहले, पूरा समाज में बहुत विदुषी सब रहथिन, जाहिमे से मेन जिनकर जिनका मतलब उदाहरण और उपनिषद में जिनकर चर्चा छनि ओहिमे से अबै छथिन मैत्री जी और विदुषी गार्गी। तो गार्गी की अगर बात कैल जाए तो वो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर रहथिन। फिलोसफी कहल जाए तो वो साहित्य में बहुत रुचि रखथिन और रुचि के साथ साथ हुनकर बहुत ज्ञान रहन। हुनकर ज्ञान छलन, वो हमेशा एकटा खोज कर छलखिन। हुनकर जे फिलोसफी छलन वो सत्य की खोज, और जे आइयो के लेल और हमेशा के लेल हर इंसान के हर जितने मनुष्य छथिन हुनका सब के लेल ई रेजोनेट करै छै। हर कोई कहीं ना कहीं सत्य के खोज में रहै छथिन, जे कि ओ एते नीक तरीका से ओहि प्राचीन काल में जतय कहल जाइ छै कि पुरुष, राजा, राज्य ई सब रहै, ओहि समाज में ओ एकटा महिला भऽ कऽ, एकटा नारी भऽ कऽ ओते नीक से ई बात के लेलखिन। ओ हर सभा में जे जतय शास्त्रार्थ होइ छलैया ओहि टाइम के, जेना कि अविनाश जी कहलखिन कि ओहि टाइम में राजा और राज्य के जे जते मतलब कि मेन जे पॉइंट रहे ओ रहे शास्त्रार्थ, ज्ञान, चर्चा, ओहि ज्ञान के सभा में जाकर ओ पुरुष संगे शास्त्रार्थ करै छलखिन बराबरी के, और हुनका हमेशा ओ एते हमेशा क्वेश्चन पूछै छलखिन और हुनकर क्वेश्चन बहुत कठिन होइ छलै, जैसे पुरुष सब हमेशा बराबरी के अथी दै छलखिन।
0: एकटा प्रसंग जहाँ तक हमरा याद अछि कि याज्ञवल्क जी रहथिन, आ याज्ञवल्क जी के जे छै प्रश्न राजा जनक जी के दरबार में ओ डायरेक्ट पूछि देलखिन जे अहाँ तऽ एतेक बड़का बड़का बात करै छी लेकिन ई बात कहो जे संसार आकाश पृथ्वी समस्त अस्तित्व जे छे
2: हाँ हुनकर हुनकर जीवनी के अगर देखल जाए तो एक बहुत बहुत ही विख्यात शास्त्रार्थ छै जेमे से वो याज्ञवल्क्य जी बहुत ही महान हाँ बहुत ही महान छलखिन साहित्यकार तो वो ओहि टाइम में जखन शास्त्रार्थ करैत रहथिन तऽ सीधा सीधा क्वेश्चन केलखिन ओ बिना झिझक और एकदम टू द पॉइंट कि सबसे पहले पूछलखिन कि संसार की छै तऽ ओ कहलखिन जे संसार मतलब संसार कई चीज पर टिकल छै तो ओ कहलखिन जल पर तो कहलखिन जल की छै कोन चीज पर टिकल छै तो कहलखिन वायु पर तो वायु तहिना कऽ कऽ ओ यूनिवर्स तक गेलखिन और पूछलखिन कि जे पूरा यूनिवर्स जे छै पूरा जे संसार कहल जाइ छै ओ कोन चीज पर टिकल छै तखन सॉरी तखन हुनका जवाब नहि भेटलनि तऽ ई कहल जाइ छै कि ओ सत्यके खोज मतलब की आधार की छै तऽ फाइनली ई बात अयलै कि जे आधार छै सत्य सत्य पर टिकल छै सबकिछु आओर ताहि लेल हुनका बहुत ही ज्यादा मानल जाइ छै कि एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछथिन
0: सबसँ अहम बात ई छै जे एकटा महिला प्रश्न कऽ रहल छथिन एकटा एस्टैब्लिश्ड ऋषिसँ महान सन्तसँ महान ऋषिसँ जे अहाँ अपन एरियामे अहाँ सुप्रीम छी अहाँके अथॉरिटी है अब हम अहाँके अथॉरिटी के चैलेंज कर रहल छी अहाँ जनै छी सब किछु के बारे में लेकिन हमरा कहू एकर आंसर की छै
2: बिल्कुल
0: एहि तरह के वुमेन पावर एम्पावरमेंट तो मिथिला में हजारों साल से चली आबि रहल है
2: एकरा कहै छै स्वतंत्रता एकरा कहल जाइ छै सशक्तिकरण एकरा कहल जाइ हाँ सशक्तिकरण कि अहाँके फुल फ्रीडम है कि जे अहाँ किनको से क्वेश्चन पूछ सकले ओहि टाइम के जे महान ऋषि रहथिन हुनका से बात करलकै आइ काल्हि जमाना के जे अपॉइंटमेंट सिस्टम छै ओहो से बढ़ि कऽ रहै और ओ हुनका सामने सीधा मुँह पर पूछ रहल छथिन तऽ ओ जमाना रहै और ओ परम्परा हमेशा से रहलै है मिथिला में मिथिला महान छै एहिमे
0: आइ के संदर्भ में आइ के एआई के युग में हम सब जीव रहल छी साइंस एतेक तरक्की कऽ गेलै टेक्नोलॉजी में बुझि लियौ जे हम सब मंगल तक पहुँच गेलहुँ आर ओहिके बियॉन्ड सेहो पहुँच गेल किछु भारत पृथ्वी पर बनल पार्ट किछु बियॉन्ड सौरमंडल पहुँच गेल तऽ आइयो के डेट में ई चीज एतेक प्रासंगिक अछि जे सुनि कऽ बहुत
1: सुरेंद्र जी एतबे नहि एना सोचियौ आइके जमानामे एते मॉडर्नाइजेशन होइके बावजूद अगर कोई लेडीज माइक लऽ कऽ एगो क्वेश्चन पूछ लै छै या कोनो जे एक टीवी न्यूज रूममे क्वेश्चन पूछ लैत छै तऽ वायरल भऽ जाइ छै ओहि जमानामे पूरा सब सभाके सामनेमे सबके बीचमे गार्गी जी ओपनली चैलेंज केलखिन ई क्वेश्चन पूछनाइ नॉर्मल क्वेश्चन शास्त्रार्थ नहि छलै एक चैलेंज रूपमे छलै कि जे अहाँ कतेक जनै छी अगर जनै छी तऽ एहि बातके जवाब दिअ आओर याज्ञवल्क जी एहि बातके बहुत ही आरामसँ बतेलखिन एहिपर चर्चा कयल जाए तऽ कई एपिसोड बनि सकलै प्लस एगो
0: तहन हम ई हमर अथी इच्छा अछि जे एहिपर हम आरो अहाँ ममता जी बैसी एहिपर गहन विशद चर्चा होय आ यूट्यूब पर जे श्रोतागण छी अपन मिथिला गुंज के यूट्यूब चैनल सेहो अछि ओहि पर अपने सब जइयौ ओहि पर अहाँ सबके एहिपर विशद अहाँ सबके विश्लेषण भेटत ठीक छै पहिरो बहुत सारा टॉपिक सब छै जे ओतऽ छै अहाँ सब जइयौ आ सुनियौ ठीक छै चर्चा के आगा बढ़बै छी कियाकि समय के कनिक अभाव रहै छै तैं हमरा कनिक जल्दी में हम हमेशा रहै छी
1: याज्ञवल्क्य जी के एक और बात जे हम जे बताबे ला चाहै छी याज्ञवल्क्य जी ओहि जमाना में एक बुक लिखलखिन बहुत सारा बुक लिखलखिन जे एक बुक काफी फेमस भेलै याज्ञवल्क स्मृति और ओहिमे आइ काल्हि के जते अपन सबके जे सामाजिक व्यवस्था छै कानूनिक व्यवस्था छै सब कुछ के आधार वहीं से औलै ओहे बुक में लिखल छै कि धन के बंटवारा केना होतै अगर संपत्ति छै तो ओकर
0: प्रश्न पर आबि रहल छै हमरा पहिने कहि देलिए कि मैत्री जे रहथिन
1: जी
0: मैत्री जी याज्ञवल्क के एहि प्रश्न पर चैलेंज केलखिन जे अहाँ जे कहि रहल छी धन के बंटवारा कि पूरा पृथ्वी के बंटवारा अगर हमरा दऽ देल जाए तऽ केओ अमर भऽ जाए तऽ ई सब प्रश्न जे छै से एहि तरह के प्रश्न ओहि समय मिथिला के जे मैथिलानी सब रहथिन प्रश्न करैत रहथिन जे अपन फील्ड में एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी छथिन हुनका सबसे
1: बिल्कुल
0: ई बहुत बड़का चीज छै जे हमरा सबके आइ के समय में सेहो बुझबाक चाही समझबाक चाही अपन जे हमर सबके संस्कृति रहल है ओहिसँ शिक्षा लेबाक चाही
1: तऽ याज्ञवल्क्य जी सिर्फ नॉलेजे नहीं दिलखिन, एग्जाम्पल सेट कलखिन। और उस एग्जाम्पल में ई छले कि उनका दूटा पत्नी छले कात्यायनी जी और मैत्री जी, तो उ दुनू के में बराबर बराबर अपन धन के संपत्ति के बंटवारा कलखिन। तो मैत्री जी
0: नहीं, बहुत बहुत नीक प्रश्न है, बहुत नीक संदर्भ से संदर्भ पर हम सब जे छे से चर्चा जारी राखब। ठीक छे, ऐसा पहने आगा बढ़े छी और एकटा भगवती के गीत के समय भ गेल छे, तो मैं मैथिली में गीत सुनाय जे छे से हम रवि दिन का बहुत सारा लोग हमरा संदेश भेजे छे जे यहाँ के जे संगीत के सिलेक्शन रहिया से बहुत बढ़िया रहिया
1: सच में, बहुत
0: तो सबके सो ध्यान राखो पड़े हमरा। तो अइ पर हम सब चर्चा राखब, चर्चा जारी राखब। ई श्रोतागण सब अहाँ सबके लेल ई नया नया गाना, नया तो नहीं कहूँ लेकिन ये गाना है, अहाँ सबके नीक अवश्य लागत।

0: केहन गाना लागल अपने सबके ई बात के कमेंट भेजब। और जो चर्चा हमसब पहिने कऽ रहल छलहुँ हैं वुमेन एम्पावरमेंट के मिथिला में ऑलरेडी पहिने से छलैया और पूरा दुनिया ओहि चीज के फॉलो करै छलैया। दोसर बात जे दुनिया के पहला गणतंत्र जे रहै से मिथिला से शुरू भेलै, मिथिला जे छलैया से ज्ञान और संस्कार के भूमि छलैया। याज्ञवल्क गौतम ऋषि के पिछला अथीम एपिसोड में सुनने रही अहाँ सब, याज्ञवल्क छलखिन हैं, मैत्री, गार्गी, एतेक राजा जनक, माता सीता, एतेक नाम अहाँ सबके भेट गेल। अब अहाँ सबके लेल एक क्विज जे कहू दुनिया के पहला गणतंत्र कतौ से प्रारंभ भेल, अहाँ सबके संदेश के हमरा प्रतीक्षा है। जे पहला संदेश भेजता उनका डांडिया के दूटा टिकट भेटतनि आवा वाला दुर्गा पूजा जे इवेंट छै टाइम में। हमर सबके दुर्गा पूजा इवेंट 17, 18, 19 अक्टूबर का भऽ रहल अछि। मिथिला महोत्सव में अपने सबके देख लेल आ सुन लेल भेटत महान मिथिला के संस्कृति और परंपरा, कला, भाषा, संस्कृति, एहि के अपने सब जे छै से प्रत्यक्ष साक्षी बनब।
1: तऽ सुशरेन्दु जी, अहाँ बार दू बेर कहलियै कि जे मिथिला महोत्सव भऽ रहल छै, ताहिमे की स्पेशल भऽ रहल छै मिथिला के लेल, अहाँ की करबै प्रोग्राम में कनी अहूँ पर?
0: मिथिला के लेल प्रोग्राम में हम जे स्पेशलिस्ट छथि से आयल छथि।
1: अच्छा।
0: जे मिथिला महोत्सव के विषय में जानकारी देती। खुशी जी, अहाँ के कहियो अगर ई प्रश्न के उत्तर अहाँ देबऽ चाहै छी।
2: मिथिला महोत्सव में सब किछु छै। अगर अहाँ मिथिला महोत्सव के देखियौ तऽ कल्चर से लऽ कऽ अखन मतलब पुरान टाइम से लऽ कऽ नया युग तक के सब चीज कवर कयल गेलैया। बच्चा से लऽ कऽ नमहर तक, जेना कालिदास के स्किट भऽ रहल छै, बच्चा सबके सीता स्वयंवर के म्यूजिकल स्किट भऽ रहल छै, मैथिली फोक डांस भऽ रहल छै, काफी सारा चीज, काफी सारा कल्चरल चीज जे छै मे कवर कयल गेलै है।
0: मिथिला के एकटा बहुत बड़ा चीज छै कोरस, जे स्त्रीगण सब छथिन एकटा गाबै छथिन गाना गबै।
2: हाँ, हमरा मतलब ई बहुत लेट पता चलल जे मिथिला मे जे छै कोनो नीक चीज जखन होइ छै, मतलब अगर सत्यनारायण भगवान के पूजा भऽ रहल छै तऽ बैकग्राउंड मे जे छै लेडीज सब गाना गाबै छथिन, ई अपना सब ओतऽ बहुत शुभ मानल जाइ छै मिथिला मे, जे कोनो चीज जे छै ना से बिना बैकग्राउंड के, मतलब बिना गाना के नहीं होइ छै। गाना एक तरीका से हमरा जे बुझाइए जे
0: ओहो के ओहो जे छै से जेना बातचीत भऽ रहल छलै तऽ ओहो के व्यवस्था, ओहो इहो एकटा प्रोग्राम छै अपन सबके आबऽ वाला मिथिला महोत्सव में। प्लस सबसे बढ़िया, सबसे बड़का चीज जे प्राचीन और वर्तमान के जे दोनों के मिला रहल छै, फ्यूजन छै, फैशन शो।
2: फैशन शो छै हमरा जे बुझा रहल है, अगर हम अपना मतलब विजन से बताबी तो हमरा जे बुझा रहल है अखन के युग में जे जते फैमिली डिस्प्यूट छै पेरेंट्स के या किछो, तो जेना स्किट छै हम ओकरा लऽ कऽ काफी ये छी, किड्स के म्यूजिकल स्किट जे छै से हमरा इच्छा है जे बच्चा सब जे छै ऑडियंस के, पेरेंट्स के एकटा मैसेज कन्वे करथुन जे फैमिली कते इम्पोर्टेंट होइ छै। जखन आइ काल्हि के युग में जते इजीली ब्रेक भऽ रहल छै तऽ ओ एकटा राम सीता के स्वयंवर ओही चीज के दर्शावल लेल छै जे मतलब एक रहनाइ कते जरूरी छै, लव स्टोरी केहन होइ छलै, कते रेस्पेक्ट जरूरी छलै साथ में, तऽ काफी किछु छै। अहूँ आउ, अपना फ्रेंड सबके सेहो लबियौन।
1: तो पूर्ण मिथिला दर्शन करा देबे।
2: जरूर जरूर, कोशिश इएह छै। आर पूरा सिडनी के इनवाइट करै छियनि जे आउ आर एहि कल्चर के जे छै ने तीने दिन लेल सही लेकिन जीबियौ।
3: सो मतलब फुल पैकेज दऽ रहल छी अहाँ?
2: यस जरूर।
1: खाना पीना के व्यवस्था रहतै?
2: जरूर खाना पीना,
1: मिथिला के बहुत प्रेम छै खाना से।
2: मिथिला मैथिल जतऽ छै भोजन नहि होय मतलब ओतऽ अधूरा भऽ जेतै।
0: मैथिल सब एहि चीज के लऽ कऽ काफी फेमस छै, बहुत लोग बदनाम कह सके छथिन लेकिन काफी फेमस छै।
2: नहि नहि, मिथिला के होस्टिंग तऽ मतलब फेमस छै।
0: जे मेहमान नवाजी छै ओ एक बेर अहां सब जरूर आबि कऽ एक्सपीरियंस करियौ।
2: हां लाइफ में
3: कहल जाय छै कि जे अगर अहां के अतिथि सत्कार देखो के तो मिथिला जाओ।
2: हाँ।
3: और ई ओना सिर्फ कहावत में नहीं छै, ओत दर्श छै। जखन जत जाय छथिन तो अतिथि के पता लगे छै कि जे हम कतौ आयल छी और हमारे साथ अलग ट्रीटमेंट भेट रहल है हमरा, ओ ओते भेटे छै।
0: बहुत बढ़िया। तो पर सो हम सब नजर ध्यान राखब जे आर की प्रोग्राम अहाँ सब कह रहल छी, तब जे हमर सबके चर्चा के जे बिंदु अछि मिथिला के हिस्ट्री ओहि पर हम सब चर्चा कर रहल छलहुँ। अहाँ बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न उठेलियै, बहुत बढ़िया संदर्भ उठेलियै मैत्री के। ममता जी अब अहाँ से हम जानना चाहे छी जे जे मैत्री के जे विद्वत्ता छलनि हैं, हुनकर जे जे जाहि तरह से ओ ऋषि याज्ञवल्क से पूछलखिन और एखन जना लोग कहे छे जे भिन्न भ गेलै, ठीक छै अहाँ के प्रॉपर्टी है अहाँ बांट दियो और भ गेल अहाँ के, तो अइ पर क्वेश्चन मार्क किया लग उठेलखिन मैत्री जी, और अइ के कोन तरह से वर्तमान के वर्तमान संदर्भ में देखल जाए
3: जी। तो मैत्री जी के जे जेना कि अविनाश जी अखन मेंशन केलखिन कि मैत्री जी याज्ञवल्क्य जी के पत्नी रहथिन और हुनकर दूटा पत्नी रहथिन, एकटा कात्यायनी एकटा मैत्री जी। तो जखन याज्ञवल्क जी के ऋषि जी सोचलखिन कि हुनका आब ए संसार के त्याग क के हुनका संन्यास लेब के टाइम रहन, ओ कहलखिन आब जे हमर संपत्ति है एक के हम नहीं किछ यूज कर सकलो हैं, हमरा नहीं चाही तो हम एकरा बांट दे छी। तो हुन ओ जे अपन लिखने रहथिन हुनकर बुक के हिसाब से संपत्ति के बंटवारा के एकटा वैदिक विधान रहन, जे के हिसाब से ओ ओकर पालन करते हुए ओहिमे ओ लिखने छथिन कि जे अगर संपत्ति छै तऽ पुत्र मे बांटल जाए और पुत्र के संगे अगर कोनो अविवाहित पुत्री है तो पुत्रियों के हिस्सा होइ छै, संगे माँ के यानी कि पत्नी के भी ओहिमे हिस्सा होइ छै। ई अपन लिखल ज्ञान छै
0: जे आई किछु साल पूर्व जे कोर्ट के आदेश ले तो वह छे
3: बिल्कुल पहले से चला अपना समाज व्यवस्था
1: छे कि बौर भाई के स्पेशल प्रिविलेज मिलते है, क्योंकि वो पिता तुल्य काम
0: करे।
3: हाँ बिल्कुल, जे घर के बौर पुत्र छलखिन हुनका पर दायित्व कनी अलग छलन जेन लिखल छे और ओके हिसाब से हुनका संपत्तियों अलग देल जाय छलन एक्स्ट्रा, तो ओ हिसाब से ई सब लिखल छे अपन अपना संस्कृति में
0: याज्ञवल्क्य की स्मृति यहाँ कहलिए
3: बिल्कुल
0: सब लिखल छे।
3: लिखल छे।
0: श्रोतागण अहाँ सब सुन रहल छी, आप अहाँ सबके आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के आप लोग के जानकारी के लिए बता दें कि याज्ञवल्क्य की स्मृति मिथिला के संस्कृति का वो महानतम पुस्तक है जिसमें हमने धन का बंटवारा कैसे हो वो लिखा हुआ है, प्लस याज्ञवल्क्य एक महान ऋषि थे जो इतने विद्वान थे जिन्होंने चेतना के ऊपर में विजय प्राप्त की हुई थी, और उनसे जब प्रश्न की करती हैं गार्गी राजा जनक के दरबार में, तो इससे प्रमाणित होता है कि नारियों का क्या स्थान रहा होगा। तो हमें हम उस पर महान परंपरा से आते हैं, हमें सभी नारियों का हमारे हम बाय डिफॉल्ट सम्मान करते हैं, और यहाँ पर कोई भी ना पुरुष ना स्त्री एक दूसरे से बड़ा है ना छोटा है, हम सब एक साथ हैं और एक साथ बने हुए हैं, एक साथ ही हैं। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अविनाश जी, और हमारा क्षमा करो बीच बीच हमारा हिंदी और मैथिली सो बाजा पड़े, क्योंकि लोग सब बहुत सारा हिंदी भाषी सब छथिन जिनका सबके रहे छन आग्रह रहे छन जे अहाँ कहू हिंदी के सब हिंदी में सब बात कैल करू। तो बहुत जल्दी सब अविनाश जी मंडन मिश्र और भारती के की संदर्भ छे, क्योंकि ओ समय रहे जहाँ पूरा भारत में सनातन धर्म जे छे से ओकरा ओकर पैरेलल एकटा धर्म शुरू भ गेल रहे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के उपरांत ई भेले जे ने बौद्ध सही ढंग से रह रहल रहत ने सनातनी सही ढंग से रह रहल रहत, ओहि समय में एक प्रादुर्भाव होइ छै महान संत के शंकराचार्य के आ ओ दिग्विजय करय लेल पूरा भारत में निकले छथिन। ओत हुनकर चुनौती भेटे छन मिथिला में अहाँ के किस संदर्भ किस प्रकाश डाल चाहबे
1: एना एना समझियो कि जे राजा जनक जी भेलखिन ओ बीसी से लगभग 4,000-5,000 या 10,000 के लगभग पहले मान लें 10,000 पहले वो भेलखिन। अभी अहाँ जे बात कर रहल छिए अभी 800 जे है ना अपना सबके समय से जे है के 800 के ईस्वी के समय में ही घटना भेले जब शंकराचार्य जी दिग्विजय के लिए जगत गुरु के उपाधि मिलने उनका और वो घूमते घूमते सब जगह गेलखिन तो उनका चैलेंज सब जगह तब विजय पा लेलखिन लेकिन घूमते घूमते मिथिला पहुँचने। अब सोचियो कहाँ साउथ इंडिया से जिनकर शंकराचार्य जी के जन्म भेले वो पूरा घूमते घूमते सब जगह विजय भ गए लेकिन उनका चैलेंज कहाँ मिलने मेन चैलेंज
0: मिथिला में भेटले। वाह
1: अही से समझ सकले कि वहाँ के लोग जे कते
0: प्रबुद्ध छलखिन
1: प्रबुद्ध छलखिन कितने ज्ञान के जे ओकरा सब के संचय
0: बिल्कुल
1: संचय कर छलखिन। तो वहाँ पर जब चैलेंज भेले तो मंडन मिश्र जी एक बहुत बड़का विद्वान छथिन उन्होंने मीमांसा जे पद्धति छै ओहि पर बहुत बढ़िया बुक लिखने छथिन ओकर टीका टिप्पणी कयने छथिन कि केना के पूजा कयल जाए पूजा के की विधि होय के चाहिए एहि सबके बारे में बहुत ही विस्तार
0: से इलाबरेट लिखल छै
1: इलाबरेट लिखने छथिन और ओ पूरा पूरा एक बात के प्रचार करै छलखिन कि जे इहे तरीका छै अहाँ जे कहलियै ने कि बौद्ध धर्म छलै ओहि सबके लिए कहले कि अपन संस्कृति के बचा के रखना भी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी छल
0: जी,
1: तो वही के लऽ कऽ ओ चले छलखिन लेकिन जे शंकराचार्य जी एलखिन तो उनका से शास्त्रार्थ भेलै और उस शास्त्रार्थ में लगभग हारे लगल
0: तो इस शास्त्रार्थ रहले जे ज्ञान नम्बर छै कि भक्ति नम्बर छै
1: बिल्कुल
0: तो एमे जे हारे लगलखिन तऽ की भेलै तऽ एमे तऽ बहुत इंटरेस्टिंग चीज छै।
1: हाँ तो ओहि समय में जे छलै कि जे इहे छलै कि जे केना के फैसला कयल जाए और फैसला करे के लेल दू गो जे प्रतिद्वंदी छलखिन उनका माला पहला पहना देल गेल छले और जे जिनकर माला पहले सूखे लगते मुरझाए लगते
0: ओ मतलब के पहिरने छलखिन माला
3: हम एक बारे में बस जोड़े ला चाहे छी कि जखन शंकराचार्य जी एलखिन घूमत घूमत मिथिला में तो जे हुनकर गाम छन मंडन मिश्र जी के ओहि गाम से पहले है मतलब ओहि गाम में एंटर करे से पहले है ओ हुनका प्यास लागलन तो ई एकटा कथा छै जे बहुत रोचक छै कि हुनका प्यास लागलन तो ओ गेलखिन कुआं पर पानि पीबऽ लए तो ओ कहलखिन जे पानि दिअ पीबऽ लेल तऽ ओ कोशिश केलखिन कि जे हुनका बुझेलनि जे संस्कृत एते नहि हेतै न तऽ ओ संस्कृत में कहलखिन तऽ ओ जे पानि कुआं से पानि निकालत रहथिन ओहो संस्कृत में जवाब
0: उत्तर देलखिन
3: फेर हाँ और फेर ओहिसे आगा बढ़लखिन तऽ देखलखिन एकटा तोता बैसल छै एकटा डारि पर ओहो संस्कृते में बात कर रहे थे तो हुनका लगलन कि अतः सच में एहन छै तो वो चैलेंज केलखिन मंडल मिश्र जी के तो जखन वो चैलेंज केलखिन तो बात भेलन कि जे जज के रहते तो जज के जखन चुनाव के बारी एले तो क्यों और ने कोनो और विद्वान ने हुनकर मंडन मिश्र जी के जे पत्नी रहथिन विदुषी भारती हुनका चुनल गेलन तो एकटा कहल जाय छै जज तो एकटा सब ओइसो ऊपर हेबाक चाहिए तखने वो सर्व ज्ञानी हेथिन तक मतलब कि हुनका ज्ञान ज्यादा हेतै वह जज आ से ओ अगर विदुषी भारती के बना लेले तो माने छथिन कालिदास की हाँ हिनका ज्ञान छन आ ये जज कह सकल
0: शंकराचार्य माने छथिन
3: सॉरी शंकराचार्य तखने ओ बनलखिन तो विदुषी भारती रहथिन
0: तो एमे दूटा चीज छुपल छे जे एकटा तो पहिने देखियो शंकराचार्य जका महान विद्वान
1: जगत गुरु
0: हुनका चैलेंज करय वाला मंडन मिश्र ओ महान विद्वान आई दुनू महान विद्वान के छे से जज के कह रहल छथिन भारती
3: भारती
0: शंकराचार्य के एतेक में कॉन्फिडेंस छन जे ई बायस नहीं हेथिन सोचियो कतेक महान परंपरा रहले मिथिला के
1: सच में अहाँ ई बात पर जे जोर दै छी ने सच में देह
0: रोमांचित भ रहल है यार
3: जखन ओ जखन जखन बारी एलन कि जे मतलब निर्णायक प्रश्न के उत्तर के और देखलखिन कि जे मनन मिश्र जी कनी पाछा मतलब हट रहल छथिन तखन विदुषी भारती एलखिन सामने आ कहलखिन अगर एहन बात छै त आब हमर प्रश्न के उत्तर दिया
0: देखियो तहन एत की भ जाय छै जे जज तो छी लेकिन अहाँ संगे संगे पत्नी सेहो छी,
3: पत्नी धर्म
0: तो हाँ पत्नी धर्म के निभावा के लेल हुनका मंडन मिश्र के जे छै से सहायता करय पड़ले।
1: और मिथिला के इज्जत के भी सवाल छले।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: अरे हमर सब मैथिलानी के सच्चाई है।
0: हाँ,
3: जखन कोनो जरूरत होय छै त हम हमेशा अपन
0: ठार रहै छी।
3: बिल्कुल रहै छी।
0: बिल्कुल, त श्रोतागण अपने सब सुन रहल छी मिथिला गुंज पर मिथिला के इतिहास हमर सब के विशेषज्ञ संगे। और समय छै अहाँ सबके कुछ याद दिया दी जे पहला गणतंत्र विश्व के कतऽ से शुरू भेले, पहला गणतंत्र विश्व के कतऽ से शुरू भेले और ओके जे विजेता रहते ओकरा लेल अहाँ की व्यवस्था केने छी खुशी जी?
2: हुनका सबके हमर सबके धमाकेदार डांडिया नाइट के दूटा टिकट रहतन, अपना कपल संगे आओ डांडिया एंजॉय करू। और हम तक सिर्फ डांडिया एंजॉय नहीं करू, अहाँ 17 से आओ, काफ़ी किछु छै। मिथिला दुर्गा पूजा जे छै एकटा अम्ब्रेला के अंदर हमसब काफ़ी किछु ऑर्गेनाइज केने छियै, अहाँके बार बार गूगल मैप में जाके अलग अलग एड्रेस नहीं डालऽ पड़त कतौ जाय लेल, जस्ट एकटा एड्रेस क्विकर हिल्स के एक बेर फीड करियौ एंड यू आर गुड टू गो। प्लीज आओ 17 से लगा 19 तक कैलेंडर बुक करियो। आर बस ड्रेसअप होके छै आर आइब का जे छै ना मिथिला के कल्चर फूड सब चीज एंजॉय कर रखे छै।
0: वाह, बहुत बढ़िया। आवा वाला समय में जे छै से बहुत नीक अहाँ सबके अहाँ सब इवेंट कर रहल छी के बहुत बहुत शुभकामना। आर जे जतेक बात अहाँ सब कह रहल छी ई सबटा रोमांचित करय वाला छै। एहि चीज पर जे छै एकटा गाना सुनल जाए मिथिला नगर से संबंधित। आओ सुनै छी एकटा मिथिला से संबंधित गाना और अहाँ सब अपन संदेश भेजनाय शुरू करू जल्दी सा।

0: संगीत के, लेकिन क्या कि समय के अभाव छै और समय के अभाव के कारण बहुत किछ छै मिथिला में जकर चर्चा एक एक टा एपिसोड चल जेतै। तो एखन जना हम सब बात कर रहल छलौं हैं, मैत्री के बात केलौं, फिर हम सब बात केलौं गार्गी के बात केलौं, भारती के बात केलौं, मंडन मिश्र के बात केलौं। तो मैत्री के से संबंधित जे जे जानकारी छै वो काफी रोमांचक जानकारी छै, क्योंकि सेम वर्डिक्ट जे माननीय सुप्रीम कोर्ट छै हुनकर आयल छै, जखन कि मिथिला में ये चीज हजारों साल से छै। ममता जी, यहाँ के किछु ओहि पर टिप्पणी है जे जे ई तऽ पहिने से छलैए, तहन फिर हम सब केना बिसर गेलियै, केना हम सब एहि रास्ता से अलग भऽ गेलियै?
1: देखल जाए तो हमरा सबके परंपरा में हमेशा से रहल है, अच्छा हमेशा सम्मानो कैल गेलैए। अगर वही समाज में देखल जाए, मिथिला के समाज में तो एखनो कोनो ने कोनो रूप में देले जाए छै आ देल जाइत रहलैए, भले नाम नहि देल जाइ छलैए हिस्सा बंटवारा, लेकिन हमेशा से ई रहलैए आ फॉलो कैल गेलैए। अगर बात करू कि बिसरऽ के, तऽ हाँ हमसब ओकर प्रारूप बिसरि गेल छलियै, जे बेस छै ओ नहि बिसरलियै। और ऐसा आगे चलू तो देखियो, भले टाइम के साथ जे डिमांड रहले कि जे किछ चेंज कैल जाए, तो कोई चीज टाइम के साथ जे समय बदले छै तो वो बदले, और आई के डेट में फिर आबि के सुप्रीम कोर्ट देलखिन सेम वर्डिक्ट और सेम फॉलो कैल जाए छै पूरा भारत में अगर देखल जाए अखन। तो बात एहन रहे कि जे ओहो टाइम में अगर देखबे तो चैलेंज तखनो कैल गेल रहे हुनकर पत्नी के द्वारा, और ओ चैलेंज अगर देखल जाए तो भौतिक नहीं भऽ के ओ समावेश रहले भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के। तो जखन याज्ञवल्क्य जी बंटवारा केलखिन अपन दुनू पत्नी में अपन संपत्ति के आधा आधा, तो हुनकर पहिल पत्नी जे छलखिन कात्यायनी ओ लेलखिन, कियाकि ओ घर गृहस्थी सम्हारै छलखिन हँ, तो ओहि हिसाब से गेलखिन। जखन मैत्री जे माता मैत्री के बारी एलन, तो ओ सीधा कहलखिन जे अगर हमरा ई संपत्ति दऽ रहल छी तऽ हमरा ई कहू कि ई संपत्ति से हमरा मोक्ष प्राप्त हैत? हमरा अल्टीमेटली चाही तो मोक्ष, हमरा तक तो जेना कि याज्ञवल्क्य जी कहलखिन जे हमरा लग में अइ हम बाँट रहल छी, तो ओ कहलखिन अहाँ लग में तो ज्ञानो अइ, हमरा ज्ञान किया नहि बाँट रहल छी? हमरा ज्ञान दी, अपन बंटवारे करै छी तो ज्ञान के बंटवारा करू, जैसे हमरा मोक्ष मिले, जैसे हम आत्मा के समझू, परमात्मा के समझू।
0: एकरा अगर हम एक लाइन में कहिए कि गार्गी के जे प्रश्न के शक्ति रहन ओ याज्ञवल्क्य के हिला देलखिन, मैत्री के जे आत्मज्ञान के प्यास छलन है जे हमरा ज्ञान चाही, ओ याज्ञवल्क्य के छै से आर ज्ञान के लेल और प्रयास करय लेल प्रेरित केलखिन। और भारतीय छलखिन है ओ हुनकर विवेकपूर्ण जे निर्णय छलन है, जे तरह से अपन ओहि परिस्थिति में अपन पति के साथ देलखिन, और एकटा निर्णय जे केलखिन जे दुनू पक्ष के मान्य छलैया, ई एकटा लैंडमार्क छै मिथिला के इतिहास में। और हमर सबके ई बुझबाक चाही जे एतेक महान परंपरा से हम सब अबै छी।

0: चलिए ना,
1: वाह
0: तऽ ओहि समय हुनकर जे ई स्वयंवरवला घटना भेलै ओहि समय राजा जनक आओर याज्ञवल्क आओर भी ऋषि वशिष्ठ जकर चर्चा पहिले कैली, विश्वामित्र रहबे कलखिन, तऽ ई सब छलखिन आओर हुनके सबसे धरती जुड़ल छै।
1: जी जी नहि नहि सएह बात छै कि देखियौ आब भले कतौ हमसब आबि गेलहुँ हँ, कोनो लोक ऑस्ट्रेलियामे रहै छथि, अमेरिकामे रहै छथि, अलग अलग जगहपर रहै छथि, लेकिन जुड़ल ओहि जगहसँ छी, ओहि माटिसँ छी जाहि माटिके महान याज्ञवल्क छलखिन हँ, गार्गी छलखिन हँ, मैत्री छलखिन हँ, राजा जनक छलखिन हँ। लेकिन बादमे चलि कऽ ई परम्परा रुकलै नहि, ई परम्परा जे छै से फेर आबि गेलै कालिदास, विद्यापति। तऽ अगर हम अविनाश जी अहाँसँ अगर पूछी जे कोन तरह, किएकि कालिदासके विषयमे कनिक अनिश्चितता छै जे कालिदास कतऽके छलखिन हँ, जे विश्वास अछि हमर सबके ई छै जे उच्चैठ भगवती छथिन कालिदास, कि हुनकर दर्शन भेल रहनि। तऽ कालिदासके विषयमे की अहाँके माननाइ अछि, आ दोसर चीज विद्यापतिके विषयमे यदि किछु ऐड कऽ सकी, किएकि समयके बहुत अभाव होवयवला अछि, तैँ अहाँसँ हम जानऽ चाहै छी।
0: कालिदासके बारेमे जीके बारेमे हम बताबैके कोशिश करब। हुनकर जन्म तऽ पक्का से एतेक मानू कि जे ओ हुनकर जन्म बिहारके मिथिलामे भेल छै,
1: वाह,
0: लेकिन ओकर कार्यशाली कर्मभूमि ओ उज्जैन रहलै
1: राजा विक्रमादित्यके दरबारमे,
0: तैं दुआरे लोकके भ्रम भऽ जाइ छै कि जे ओ उज्जैनमे ही जन्म लेलखिन, उज्जैनमे सबकिछु केलकै, लेकिन एकरा एना समझियौ कि हुनकर जन्म बिहारके जे अपन सबके बेनीपट्टी गाँव भेल,
1: वाह,
0: प्रखंड
2: बेनीपट्टी,
0: माता उच्चैठ जे छै माता काली भगवती छै, तऽ वहीं पर हुनका ज्ञान मिललै आओर फेर ओहिके बाद अथी भेलै।
3: हम एकटा चीज एहिमे ऐड करऽ चाहब शिशिरेन्दु जी, जे थैंक्स टू अविनाश जी, तऽ ई पूरा तऽ नहि बता सकता, मतलब टाइमके अभाव छै कालिदास लेल, लेकिन हम ऑडियंसके कहऽ चाहबै कि प्लीज मिथिला महोत्सवमे आउ, किएकि अविनाश जीके मददसँ मतलब हुनकर पूरा देखरेखमे कालिदासके जे स्किट छै पूरा कयल जा रहल छै, ओ निर्माता निर्देशक छथिन किएकि ज्ञानके भण्डार छथिन, आओर हुनके थ्रू ई सब स्टोरीज जे छै हमसब चाहै छियै जे आइके जेनरेशन जे छै जिनका कोनो क्लूए नहि छनि तऽ हुनका तक पहुँचै, ओ मैसेज
1: पहुँचै। बहुत श्रोतागण अपने सबसे करबद्ध प्रार्थना जे अबियौ देखियौ कालिदास के की छलखिन हँ, कालिदास केना महाकवि कालिदास बनलखिन, आओर अपन जे फेसबुक ग्रुप अछि ओहिपर सेहो किछु सम्बन्धित जानकारी पोस्ट कयल गेल छै, अहाँ सब देखियौ पढ़ियौ। लेकिन सबसँ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग 17 अक्टूबर 3 बजेसँ शामके 7 बजे तक अहाँ सबके मिथिला महोत्सवमे सम्मिलित भेनाइ अत्यंत आवश्यक अछि, यदि अहाँ जानऽ चाहै छी मिथिलाके सभ्यता, संस्कृति, कला, भाषा एहिके विषयमे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सब आदमी से, और ई जाननाइ और भी जरूरी छै कि एना समझियौ, कोई आदमी आइ कहै छथि कि जे हम इनकेपेबल छी, हम ई काम नहि कऽ सकलियै, हमरा ओते बुद्धि नहि है, ओहि जमानामे कालिदास अगर विद्वानमे प्रकाष्ठा छलै तऽ बेवकूफमे भी ओकर प्रकाष्ठा छलै,
1: तऽ दुनू
0: बुझलियै कि नहि। तऽ ओ जर्नी छै, जे जर्नी समझैके छै, अहाँके देखैके छै, जैसे शिक्षा लैके छै, तऽ कालिदासके जे स्किल छै जरूर।
3: हम लेकिन एकटा चीज अविनाश जी एहिमे ऐड करब जे कतबो मतलब मूर्ख रहथिन कालिदास, लेकिन हुनकर पत्नी जे छलखिन
0: विद्योत्मा
3: जे छलखिन से एंड तक हस्बैंड के साथ निभेलखिन, मतलब हुनका ओहि जगह पर जे छै ने अपना पति के छोड़लखिन नहि।
1: नहि मे कनिक अथी छै, कन्फ्यूजन छै जे छै जे कहलखिन जे अहाँ जाओ ज्ञान प्राप्त कऽ के आओ आओर एहिके बाद हम देख सोचब,
3: तहन ओही लेल ओ एनकरेज तऽ केलखिन,
1: एनकरेज केलखिन,
2: अब तो एनकरेजमेंट तऽ एनकरेज वएह केलखिन, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद ओ टर्म हुनकर बदलि गेलनि, ओ सिचुएशन के मांग रहनि जे डिमांड
0: रहनि, तै दुआरे उन्हीं से जे है ना अच्छा छोड़ि के उज्जैन चलि गेलखिन।
1: हाँ, लास्ट में श्रोतागण अपने सबके लेल कुछ फिर हम एक बार रिपीट करब कि दुनिया में पहला गणतंत्र के सीट की छै, अहाँ सबके लेल दूटा डांडिया के टिकट इंतजार कर रहल अछि, जे केओ जवाब दऽ रहल छी, जवाब वाला कैमरा आबि रहल है, बहुत बहुत सारा आदमी के जवाब आयल है, तो अपने सब तक हम सब पहुँचब। और अंत में यदि एक मिनट में अविनाश

0: जी कुछ कह सकिए महाकवि विद्यापति, हालांकि बहुत अन्याय हेतु विद्यापति के मात्र एक मिनट देना है। विद्यापति एहन कवि और भ सके एक चर्चा के हम सब अगला बेर सो कंटिन्यू राखब। तो विद्यापति रह गला है क्योंकि समय समाप्त तो हो वाला है, तो विद्यापति रह गला है
1: विद्यापति के ना देखियो बहुते लोग विद्वान भेलखिन लेकिन वो भक्त विद्वान भेलखिन और तै द्वारे वो मिथिला के जन जन में बसल छथिन। उनकर जे कविता भेले वो सिर्फ कविता ज्ञान के बारे में नहीं लिखलखिन, वो भाव विभोर होकर भक्ति में डूब कर लिखलखिन और एहन लिखलखिन कि भगवान भोलेनाथ खुद उनकर नौकर बनकर आए।
0: वाह,
1: कैन यू इमेजिन वाले बात छै
0: एहन एहन
1: कि जे कोई पर भक्ति और ज्ञान से भगवान के अपन नौकर में रख लेलखिन और ई घटना छे विद्यापति जी के।
0: एक मिनट में कुछ जी कुछ कह चाहे क्या कि समय समाप्त हो चुकल है।
2: ई समय आजका त समाप्त भ गेले अविनाश जी, लेकिन हम अहाँ से जरूर स्टोरी सुना चाहब क्योंकि हमर जन्म जे कलकत्ता है और हम बचपन से जे छै ना बंगाली कम्युनिटी में नम्हर भेल छी, त हम हमेशा सुनलिए जे विद्यापति जे छथिन हुनकर सबके छथिन।
0: तो देखियो
2: अगर यहाँ बंगाली बुक पढ़बे त अहाँके बहुत सारा मतलब भेटत अहाँके पोएट्री वगैरह।
0: अई प्रश्न के जे उत्तर छै ना पिछला एपिसोड में छै क्या कि गंगा आरो जे हिमालय अई के बीच के जे भू भाग छै ओ पूरा मिथिला छलै है। तो एखन भले आप बैठ गेल छै बंगाली असामी फलाना ढमकाना बहुत सारा कुछ भ गेल छै लेकिन ओ पूरा भूभाग मिथिला छलै है, तो संस्कार ओते छै। तो आप भले हम सब कुछ कह दिए जो ओहि गाम के छलखिन है विद्यापति चाहे एहि गाम के छलखिन है लेकिन विद्यापति मिथिला के छलखिन है।
3: विद्यापति मिथिला के छलखिन है, तो ई प्रूवन छै।
0: हाँ, विद्यापति पर चर्चा हम सब अगला एपिसोड में सो जारी राखब क्योंकि ये अन्याय भ जेतै। हम ई नहीं चाहे छी दर्शक सब के संगे, दर्शक सब अगला बेर तैयार रहो विद्यापति के महान जर्नी सुना के लेल। अहाँ सबके अंत में
1: जीवन के घटना के
0: हाँ सब सुना के लेल अंत में जायत जायत अहाँ सबके रिमाइंड कर दी जे 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक मिथिला महोत्सव भ रहल है सिडनी में। दुर्गा पूजा के संग माता दुर्गा के संगे माता की चौकी शाम में हेतु जाय में पंजाब हरियाणा दिल्ली के लोग सब पार्टिसिपेट कर रहा है। डांडिया हेतु जाय में गुजरात महाराष्ट्र एमपी के लोग सब पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अहाँ सब अबियो सुनियो और अ सब संगे हमरा सबके विदा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके और जे सब भेजले था संदेश हुनका सब संग संपर्क करब। धन्यवाद
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: Radio 2098.5 FM Community Program
1: सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio.
2: आज रविवार युगाब्ध 5126, कलयुग विक्रम संवत 2083, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया 13 अगस्त 2026 है. दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा, प्रदीप उपाध्याय और अजय गुप्ता का सप्रेम नमस्कार. अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार. मुख्य समाचार इस प्रकार हैं. ब्रिक्स समिट से पहले चिदंबरम का बड़ा सवाल, पिछले 2-3 सम्मेलनों से भारत को क्या मिला. भारत पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन, पीएम मोदी से अहम मुलाकात. ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पीएम मोदी से पुतिन की मुलाकात. जाने कड़े वैश्विक दबाव के बीच कितनी मजबूत है भारत रूस की दोस्ती. एफएएस की रिपोर्ट देख सो नहीं पाएगा पाकिस्तान. भारत के पास करीब 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने का अनुमान. 7 साल बाद भारत आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मोदी से होगी महा बैठक. रेल यात्रियों को क्या फायदा होगा, 7 हाई डेंसिटी रेल नेटवर्क को 4 लेन करने की मिली मंजूरी. दुर्गा पूजा में नॉनवेज पर बागेश्वर बाबा की अपील से बवाल, बंगाल बीजेपी बोली बंगाली मछली कैसे छोड़ सकते हैं. अब सुनिए समाचार विस्तार से. भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयानों ने सियासी बहस तेज कर दी है. पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने ब्रिक्स समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि पिछले 2 या 3 ब्रिक्स सम्मेलनों से कोई ठोस लाभ या ठोस परिणाम सामने आए हैं. वास्तव में हम ब्रिक्स का हिस्सा हैं, एससीओ का हिस्सा हैं, G20 का हिस्सा हैं और क्वाड का भी हिस्सा हैं. इनसे हमें क्या लाभ मिल रहा है, मुझे नज़र नहीं आता. वहीं सलमान खुर्शीद ने चिदंबरम की बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत बताई, जबकि शशि थरूर ने ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मंच करार दिया. ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियन ब्रिक्स समिट 2026 में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे. समिट से पहले वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. दोनों नेताओं की बातचीत पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें हैं. भारत यात्रा पर रवाना होने से पहले ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि नए ब्रिक्स बैंक का गठन देशों को डॉलर पर निर्भरता से मुक्त करने और दुनिया में अमेरिका के प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास का मुकाबला करने के लिए किया गया था. ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक से एक बार फिर दुनिया की निगाहें भारत रूस के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों पर टिक गई है. पश्चिम के भारी दबाव और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद दोनों देशों की यह दोस्ती कड़े इम्तिहान से गुजरते हुए आज भी मजबूत बनी हुई है. रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष ऊर्जा और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का लंबा सहयोग है. भारत की सैन्य ताकत बनाने में रूस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है. सुखोई लड़ाकू विमान, T-90 टैंक, मिसाइल सिस्टम, हेलीकॉप्टर और परमाणु पनडुब्बियों से लेकर ब्रह्मोस जैसी संयुक्त परियोजनाओं तक रक्षा सहयोग फैला हुआ है। अब बातचीत का दायरा पांचवीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान, परमाणु ऊर्जा और नई रक्षा तकनीकी तक पहुंच रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ने वाली है। भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका की गैर लाभकारी संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS के अनुमान के मुताबिक भारत के पास करीब 190 परमाणु हथियार हो सकते हैं। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के बेड़े के जरिए भारत समुद्र में अपना न्यूक्लियर कवच बना रहा है। रिपोर्ट का कहना है कि भारत लगातार अपने परमाणु हथियारों और उन्हें ले जाने वाले सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। पालम एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड होते ही वैश्विक कूटनीति का पारा चढ़ गया है। साल 2020 की गलवान घाटी की झड़प के बाद दोनों देशों के बीच उपजे तनाव के साए के बीच जिनपिंग का ये पहला भारत दौरा है। इससे पहले वह आखिरी बार 2019 में भारत आए थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स मंच पर वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा विकास, सुरक्षा और बदलती विश्व व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दो दिग्गज नेताओं की इस मुलाकात पर दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई हैं। कजान और तियानजिन के बाद ये लगातार तीसरा साल होगा जब दोनों नेता आमने सामने मिलेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के 7 हाई डेंसिटी रेलवे नेटवर्क को 4 लेन करने की मंजूरी दे दी। इसमें दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता और कोलकाता दिल्ली जैसे देश के प्रमुख रेल मार्ग शामिल हैं। सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क की लाइन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे ट्रेनों की आवाजाही बेहतर होने के साथ भारतीय रेलवे की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सर्विस रिलायबिलिटी में भी सुधार होगा। बागेश्वर बाबा के नाम से लोकप्रिय धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हावड़ा जिले के लिलुआ में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं से शाकाहारी भोजन करने की अपील की थी। इस पर बवाल मच गया। पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने धीरेंद्र शास्त्री का नाम लिए बिना उस अपील को खारिज कर दिया। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कृपया बुरा मत मानिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की एक बात मुझे पसंद नहीं है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों के पास नॉनवेज खाना खाया जाता है। इस पर भाजपा नेता भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाली मछली और मांस कैसे नहीं खा सकते। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि मां काली को मटन चढ़ाया जाएगा। अगर कोई विवेकानंद से ऊपर उठने की कोशिश करता है तो यह उनकी अपनी निजी राय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह फ्रेट कॉरिडोर एक और वजह से कमाल का है। हाल ही में JNPT पोर्ट मुंबई से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया। अब ये जो नाराज फूफा जी हैं वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं विकसित भारत की यात्रा को और गति देने के लिए आपके बीच आया हूँ। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,54,410 रुपये प्रति 10 ग्राम था। US डॉलर की विनिमय दर थी 95 रुपये 60 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 68.52 रुपये। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं अजय गुप्ता और मैं संजीव शर्मा, और हर सप्ताह की तरह आपके लिए लाए हैं कुछ मिले जुले गीत, कुछ सामाजिक सूचनाएं। और अजय, आप क्या लेके आए हैं आज?
3: श्रोताओं नमस्कार। हम हर बार की तरह आपके लिए मनोरंजन भी लाते हैं और थोड़ी ज्ञान की चीज़ें भी लेके आते हैं। तो आज हमारे पास एक दो साक्षात्कार हैं। पहला है सिडनी की जानी मानी रंगमंच की निर्देशिका ज्योत्सना ज्योति जी से, जो एक अपना नया नाटक लेके आ रही हैं दशोरंग के नाम से। तभी उनसे बात करवाएंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अचिन जैन। अचिन जी, आपका स्वागत है। अचिन जी बड़े बहुमुखी हैं, उन्होंने स्विट्जरलैंड में ज्यूरिच से पीएचडी करी है, और उसके बाद में वो बोस्टन में कई दिन काम किया, और हमारा सौभाग्य कि सिडनी में आए। और उनके जो प्रोफेशनल है चीज़ें, उससे तो ऑस्ट्रेलिया का फ़ायदा हो ही रहा है, और हमारा स्टूडियो को आज बड़ा फ़ायदा होएगा उनसे चर्चा करके।
2: तो श्रोताओं, अब समय होता है प्रभु वंदना का, पर उससे पहले सुनते हैं आज का विचार। कहा जाता है कि अनुभव वो स्कूल है जहां फीस बहुत भारी चुकानी पड़ती है, लेकिन सीख सबसे बेहतरीन मिलती है। जीवन में असफलताएं और मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें अंदर से मजबूत बनाने आती हैं। आज का सच यह है कि ज्ञान सिर्फ किताबें पढ़ने या डिग्रियां हासिल करने से नहीं आता, बल्कि ठोकरें खाने के बाद संभलने और हर रोज कुछ नया सीखने के दृष्टिकोण से बनता है। इसलिए अपनी गलतियों से डरिए मत, उन्हें अपना गुरु बनाइए। याद रखिए, सूरज हर रोज डूबता है ताकि अगली सुबह वो और अधिक चमक के साथ उठ सके। आपका आज का प्रयास ही आपके कल का सबसे मजबूत आधार है। तो श्रोताओं, आज जो भजन लाए हैं वो नई फिल्म हनुमान अंश से लिया गया है, और आशा करते हैं आपको पसंद आएगा।

0: श्रोताओं, कुछ तकनीकी वजह से ये भजन आपको नहीं सुना पा रहा हूँ। अभी 2 मिनट में फिर आपको सुनाएंगे।
1: तो जैसा मैंने बताया था कि जो हमारे साथ अचिन जैन जी हैं, जो आज सबसे बड़ा टॉपिक होता है सोलर एनर्जी का, सौर ऊर्जा का, और इतना प्रचलित हो गया है कि सूरज की रोशनी को हम कैद कर लेते हैं और उससे अपने रोज़मर्रा की चीज़ें करते हैं, और अब तो ये भी हो गया कि उसको कैद करके बैटरी में स्टोर कर लें और धीरे धीरे अपने मन से उपयोग करें, तभी नहीं जब हम मतलब सूरज सूर्य देवता की कृपा होती है। तो अचिन जैन जी हैं यहाँ पे, और उनसे हम बात करेंगे मतलब काफ़ी सारे मुद्दों पर। तो अचिन जी, आप जो सोलर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको तो हमने मुट्ठी में अभी दबाया है, तो उसके पहले जो सूर्य देवता की कृपा होती थी वो ऊर्जा वो कहाँ जाती थी, आपको क्या लगता है?
0: तो अजय, भजन तैयार हो गया, पहले भजन सुन लें, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है?

0: तो श्रोताओं, ये भजन हमने लिया था नई फिल्म हनुमान अंश से, और अपने सुनने वालों को ये भी बता दें कि अब ये फिल्म आप आराम से देख सकते हैं, काफ़ी सिनेमा हॉल्स में लग रही है और काफ़ी शोज़ हो रहे हैं। जी हाँ, ये नीब करौली बाबा के ऊपर आधारित फिल्म है और हिंदुस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही है, और आशा करता हूँ यहाँ पे भी सबको बहुत पसंद आएगी।
1: संजीव, इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि जब ये बनी थी
0: जी,
1: काफ़ी लो बजट पे बनी थी,
0: 2 करोड़ में।
1: हाँ, और उसके बाद में पहले दूसरे हफ्ते भी ऐसे ही ठीक रही, तीसरे हफ्ते में सोच रहे थे कि ये शायद ख़त्म हो जाएगी
0: जी,
1: और तीसरे हफ्ते से जो पिकअप किया है लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से
0: जी,
1: वो मतलब अभी बहुत पसंद की जा रही है और सुपरहिट मूवी निकली है।
0: हम सुन रहे हैं कि 160-170 करोड़
1: हाँ
0: जो है पार कर चुकी है।
1: तो भारत के लोगों के भी टेस्ट जो हैं, ये भारत के भारतीय कह लीजिए, बाहर के बाहर बहुत मतलब मैच्योर हो रहे हैं कि एक ही ढर्रे पे नहीं है कि वही चाहिए उनको बार बार बॉलीवुड सॉन्ग्स और उसी पे मतलब।
0: और मैंने अजय देखी नहीं है फिल्म, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ी बड़ी फिल्में मार धूम धाम, अब ये एक एकदम से सिंपल सी फिल्म आई है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, सिंपल से कोई भी कोई बड़ा स्टार नहीं है, कर नथिंग। तो धीरे धीरे एक कोने में
1: रिफ्रेशिंग चाहिए।
0: यस तो वो है। तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और बातचीत करते हैं।
1: तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे स्टूडियो में है अचिंत जैन, जो अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। अचिंत जी,
2: जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस शो पे न्योता देने के लिए। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आप सबसे इस माध्यम के थ्रू बात कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा अपना परिचय दूंगा। तो जैसे अजय जी ने बताया, मैंने ETH ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड से PhD करी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मेरा फोकस था सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें मैंने सोलर सेल्स और फोटोवोल्टाइक सेल्स पे भी काम करा है। और अभी कुछ सालों से मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, ऑस्ट्रेलियन एनर्जी मार्केट कमीशन, वहाँ पे काम करता हूँ पॉलिसी एडवाइज़र की तरह। तो हमारा जो यहाँ पे काम है, हम लोग सरकार को, फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को सौर ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड सोलर, इन सब पे पॉलिसी की सलाह देते हैं। और हम लोग ऑस्ट्रेलिया के जो एनर्जी मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी और गैस मार्केट्स, उसके रूल्स बनाते हैं।
1: हाँ, तो आप मूल रूप से भारत में कहाँ से हैं और आपने वहाँ क्या किया था?
2: मैं भारत में हूँ मेरठ, उत्तर प्रदेश से, और मैंने वहाँ पे अपनी पूरी पढ़ाई, स्कूलिंग वहीं से करी है। और उसके बाद मैंने BTech करा था IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में।
1: तो आज आपसे बहुत सारी बातें होंगी सौर ऊर्जा के बारे में और भी मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे बैटरियाँ हो गई, EV हो गई। तो संजीव जी, एक गाना सुना रहे हैं, अच्छा सा।
0: बिल्कुल, गाना सुना रहे हैं। और श्रोताओं, आज हम लाए हैं सारे गीत SP बाला सुब्रमण्यम के गाए हुए, और आपको याद होगा कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत गाए हैं। और अजय, आपको उनका पूरा नाम मालूम है? SP बाला सुब्रमण्यम,
1: बहुत लंबा चौड़ा होगा।
0: जी, तो उनका पूरा नाम है श्रीपति पंडितरा धुला, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली, बाला सुब्रमण्यम, यानी हमारे अपने SPB। उन्होंने अपने शानदार करियर में 16 से अधिक भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। ये कोई आम बात नहीं है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने का कीर्तिमान इनके नाम दर्ज है, तो 16 भाषाओं में। हिंदी सिनेमा प्रेमियों के लिए उनकी आवाज़ एक अमूल्य तोहफा थी। फिल्म मैंने प्यार किया का वो गाना दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, आज भी जब कानों में पड़ता है तो 90 के दशक की वो सुनहरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो चलिए, उनका जो है, उनके ही आज सारे गाने मैं लेके आया हूँ, तो सुनते हैं पहला गाना।

0: तो अचिन जी, अपने वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं
1: जी।
0: तो आपने सोलार के ऊपर काम किया है, सभी कंडक्टर्स पे काम किया है, दोनों ही काफ़ी जो है चर्चा में रहे हैं विषय
1: जी।
0: तो बेसिकली हमें समझाइए कि जो है ये सूरज की जो ऊर्जा है ये कैसे कैप्चर होती है
1: जी। तो ये है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो सेमीकंडक्टर होते हैं जब उस पर सूरज की ऊर्जा पड़ती है तो वो उससे बिजली प्रोड्यूस करते हैं। और ये इफेक्ट वैसे तो बहुत पुराना है, इसकी डिस्कवरी हुई थी 1839 में, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे एडमंड बेकरल, तब उन्होंने ये डिस्कवर करा था। इसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, जिसमें एक फोटोन पड़ा और वोल्टेज बनी, बहुत सिंपल है। बट तब जो सोलर सेल्स थी उनकी एफिशिएंसी बहुत ही कम थी, तो इसलिए वो प्रैक्टिकली उनका कोई इस्तेमाल हो नहीं सकता था। तो इन पर 200 साल से लगभग रिसर्च चल रही है। इसका सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू हुआ वो इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। UNSW के प्रोफेसर मार्टिन ग्रीन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा एफिशिएंसी का। उन्होंने एक नई टेक्निक बनाई जिससे सोलर सेल की एफिशिएंसी 18% तक उन्होंने शो करा।
0: ये कब की बात है?
1: ये बात है 1983 की, 1983, आज से लगभग 40 साल पहले उन्होंने ये डिस्कवरी करी। और दुनिया में जितनी भी सोलर सेल आज बनती हैं वो सारी उसी तकनीक से बनती हैं जो प्रोफेसर मार्टिन ग्रीन ने UNSW में दिखाई।
0: तो फिर उसके बाद में उसकी एफिशिएंसी और बढ़ी?
1: हाँ, अब धीरे धीरे धीरे और थोड़ी बढ़ रही है, पर अभी भी 20-25% के बीच में इसकी रहती है एफिशिएंसी।
0: अच्छा।
1: जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ एफिशिएंसी का क्या मतलब है। एफिशिएंसी से हमारा मतलब है कि सोलर सेल पे जितनी सूरज की ऊर्जा पड़ रही है उसमें से कितने प्रतिशत हम उसको बिजली में बदल सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो 20% का मतलब है कि 100 में से 20 सिर्फ जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है।
0: तो मैंने एक सवाल पूछा था, बड़ा ही मतलब ले सवाल है, कि अगर हम उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ों के लिए, अगर नहीं यूज़ करते तो फिर कहाँ जाती है ऊर्जा, और जो नहीं कर पाते वो कहाँ जाती है? तो मतलब इसी धरती को उसका टेम्परेचर बढ़ाती है, तो इसके तरीके से तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट करती है वो, और उसको हम कम कर रहे हैं।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि देखिए, सूरज तो क्या है, सूरज की ऊर्जा तो पूरे सोलर सिस्टम में, पूरी यूनिवर्स में सब तरफ जा रही है। इतने सारे स्टार्स हैं, उनकी जो एनर्जी है, लाइट है, वो सब तरफ जा रही है
0: जी।
1: और जो सूरज की जो ऊर्जा जो अर्थ पे पड़ रही है वो तो बहुत ही थोड़ी सी है, वो तो लाइक 1% से भी कम है, और वो भी ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाती है, कुछ क्लाउड से कभी रुक जाती है या ओजोन लेयर से ट्रैप होती है, बट ज़्यादातर सूर्य की ऊर्जा हमारी चली जाती है।
2: बट वो ऊर्जा रुक जाती है इसीलिए शायद हम लोग जीवित हैं, मतलब अगर पूरी ऊर्जा आने लग जाए तो शायद ये पृथ्वी पे जीवन ही ना रहे।
1: बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो अब जैसे जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये सूरज की ऊर्जा से ही चलते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, सूरज की ऊर्जा से ही वो फल बनाते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है। और ग्लोबल वार्मिंग की जो हम पहले बात करते थे कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, उसका भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि उस वजह से भी हमारे जो है एक्सेस यूवी ट्रैप हो जाती है।
0: तो हमने तो एक फिजिकल फॉर्म में उसको कैप्चर किया है, तो प्रोसेस चाहे अलग हो, तो उस ऊर्जा को कैप्चर करने का जो पेड़ पौधे हैं वो भी फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, तो सेल में भी वो प्रोसेस होता है, पर थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग होगा
1: जी,
0: उसी के बेसिस पे होता है सोलर।
1: फोटोसिंथेसिस बहुत अलग प्रोसेस है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और जो सेल्स में होता है वो थोड़ा फिजिकल, फिजिक्स और उसमें सेमीकंडक्टर्स के थ्रू होता है।
0: तो अब ये टेक्नोलॉजी मतलब काफ़ी पॉपुलर हो गई है
1: जी,
0: और सभी जगह उसका मतलब प्रयोग हो रहा है
1: जी,
0: और काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज आजकल सोलर से प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी अलग पावर है, तो अभी तक कितना पेनिट्रेशन हो पाया है, कितना?
1: जी जी, तो इनफैक्ट अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सोलर काफ़ी हाई पेनिट्रेशन, ऑस्ट्रेलिया अगर हम सिर्फ घरों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड की हाईएस्ट है सोलर पेनिट्रेशन, मतलब कि इस समय ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40% घरों में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट है अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो। और इस समय लगभग 30 GW तक कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है ऑस्ट्रेलिया में घरों में सोलर पैनल की, और ओवरऑल ग्रिड में इससे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ग्रिड में हमारे विंड भी है सोलर के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी में।
0: तो मतलब एक तो घरों के ऊपर सोलर लगते हैं जो पैनल लगाए जाते हैं, फिर ऊपर से कई सारे सोलर फार्म भी हैं जो खाली मतलब इसी के लिए लगाए जाते हैं, जो वो भी जो है मतलब देश विदेश सब जगह पॉपुलर हो रहे हैं। इंडिया में भी कहते हैं कि बड़े बड़े जैसे राजस्थान में मरुभूमि है वहाँ पे लगाए जाते हैं, और कहीं तो मैंने ये भी सुना है कि जो तो केनाल वगैरह होते हैं तो उसको एवापरेशन रोकने के लिए ऊपर ये लगा देते हैं और ऊपर से सोलार लगा दिया तो जैसे कि बिजली भी बन रही है।
1: जी जी जी, तो सोलर बेसिकली आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सोलर इतना चीप हो गया है कि उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। चैलेंज इसमें ये है, जो मुद्दा आता है ट्रांसमिशन का, कि सोलर आपने जैसे रेगिस्तान में लगा तो दिया पर उसको वहाँ पे इस्तेमाल करने वाला तो कोई है नहीं, उस बिजली को
2: लेके आना,
1: उसको शहरों तक लाने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल लाइन्स डालनी पड़ेंगी, वो कॉस्ट उसकी कॉस्ट होती है।
0: और उसमें थोड़ा सा लॉस भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का।
1: हाँ, थोड़ा सा लॉस होता है, पर सबसे बड़ा चैलेंज कॉस्ट का है। और ऑस्ट्रेलिया में इस समय यही दिक्कत है कि ऑस्ट्रेलिया में
2: बैटरी, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना सब घरों को इंडिपेंडेंट यूनिट स्मॉल।
1: जी जी,
2: एक और मैंने चैलेंज जो अजय सुना था कि आपने बिजली ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई इस दिन इतनी जरूरत होगी, उसके हिसाब से इन्होंने बिजली बना ली, अब उस दिन बरसात हो गई तो आप वो जो एक्सेस बिजली बन गई है आप कहीं रख तो सकते नहीं है।
0: चैलेंज होता होगा वो।
2: तो ये जो सबसे बड़ी मुसीबत, तो अभी ये लोग आपने कई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो घरों की बैटरीज हैं उनको एज अ वर्चुअल पावर हाउस यूज़ करती हैं, तो जब एक्सेस बन गई तो वो सारी बैटरी में स्टोर हो जाएगी, और जब उनको एकदम से मान लीजिए कभी ज़रूरत ज़्यादा हो गई तो वो उन बैटरियों से ले लेते हैं।
0: प्रेग्नेंट बन गया है।
2: कई जगह तो ये लोग क्या करते हैं कि पानी को पंप कर देते हैं ऊपर हाइट पे, कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है उससे उन्होंने पंप कर दिया और वो लाइक एस पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे स्टोर्ड है, और जब एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत हुई वो पानी छोड़ के फिर टर्बाइन चला के जनरेट कर लेते हैं। तो काफ़ी टेक्नोलॉजी है उसमें।
0: पर अजय जी, ये जो टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो रही है। मैंने सुना है कि सोलार पैनल जो है पुराने जो होते थे कुछ सालों की लाइफ होती है, फिर उसके बाद में ज़्यादा एफिशिएंट आते थे, उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, ये पुराने चलते रहते हैं जब तक उनकी लाइफ ख़त्म हो जाए।
1: जी, तो सोलर जो सिस्टम्स हैं इनकी आज की डेट में 25 से 30 साल का लाइफ स्पैन है, तो ओवर टाइम इनकी एफिशिएंसी डिग्रेड होती है। जैसे एक तो होता है कि नॉर्मली उस पर थोड़ी डस्ट वगैरह की वो तो क्लीनिंग करनी पड़ती है, पर जो सेल भी है उसके अंदर माइक्रो क्रैक्स आने लगते हैं, डिफेक्ट्स आने लगते हैं, तो धीरे धीरे एफिशिएंसी कम होती है। पर 25 से 30 साल तक आपका एक सिस्टम।
0: और एक प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा, जैसे आपने सोलर पैनल लगा दिए 20 लगा दिए समझिए, तो उसमें ऐसा भी होता है कि जो सबके एक से साथ नहीं फूकेंगे, कभी दो चार बीच में फेल हो जाएं, तो जहाँ जैसे बीच लगाया आपने तो
1: काफी रिलायबिलिटी काफी अच्छी है, डिपेंड करता है आपने कौन सी ब्रांड
0: तो हाँ मतलब उन दो चार को रिप्लेस करना पड़ता होगा फिर,
1: वो भी हो सकता है। कि अगर कोई डैमेज, कभी कभी डैमेज हो गया, हेल से डैमेज हो गया कुछ इस तरीके से।
0: हाँ,
2: तो श्रोताओं आइए एक हमारे स्पॉन्सर का संदेश सुन लेते हैं।

0: Curry Master's Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश. चलिए, SP बालासुब्रमण्यम द्वारा गाया हुआ एक और बहुत प्यारा सा गीत सुनते हैं.

0: looking for personal or business tax or self-managed super fund accounts and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices, mention The Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio.
1: श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर दर्पण रेडियो का संदेश।
2: तो श्रोताओं, हम अचिन जी से अपनी बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच में मैं आपसे बात करवा रहा हूँ सिडनी की जानी मानी रंगमंच की निर्देशिका ज्योत्सना ज्योति जी से। इनकी खासियत ये है कि इनमें इतनी एनर्जी है, एक हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, पर इनके खुद की इतनी एनर्जी है कि हर साल जो हम एक सिडनी वासियों को नया नाटक देती हैं, और इतने अच्छे नाटक होते हैं इनके। 10 साल से ये नाटक दे रही हैं, हर साल लगभग एक नाटक आता है इनका, और इस बार नाटक कर रही हैं अपने 10वीं वर्षगांठ पर, जिसका नाम रखा है दशोरंग। तो सौभाग्य है कि ज्योत्सना जी हमारे साथ बनी है। ज्योत्सना जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दर्पण रेडियो दर्पण में शामिल करने के लिए। और जैसे कि आपने बताया ही दर्शकों को कि इस साल हमारे थिएटर ग्रुप जिसका नाम है विविधा आर्ट्स, उसकी 10वीं वर्षगांठ है, तो ये बहुत ही स्पेशल है, और इसलिए मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस रेडियो दर्पण के कार्यक्रम में आपने मुझे शामिल किया है।
2: तो श्रोता जानना चाहते हैं कि इस बार उनको क्या देखने को मिलेगा।
3: तो अजय जी, जैसे क्योंकि दशोरंग एक नाम बस मुझे सूझ गया, क्योंकि एक तो 10वीं वर्षगांठ है और मैं चाह रही थी, क्योंकि रंगमंच है, रंगमंच के बहुत सारे रंग होते हैं, तो बहुत सारे रंग उसमें शामिल करने की कोशिश थी। तो वर्षगांठ तो सभी मनाई जाती है कई कितनी ऑर्गेनाइजेशंस की, ग्रुप्स की, लेकिन क्योंकि ये एक रंगमंच की वर्षगांठ है, थिएटर ग्रुप की वर्षगांठ है, तो इसमें थिएटर होना जरूरी था, कुछ नाटक, कुछ कुछ मंचित करना। तो इसलिए हमने ये सोचा कि मैंने ये सोचा कि कुछ थिएटर के जो डिफरेंट कलर्स हैं और उनको उनका पर्पस क्या है, कि ज्यादातर थिएटर सिर्फ एक कहानी नहीं है, थिएटर उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उसमें एक तो बहुत कहानियां देखने को मिलती हैं, जिंदगी के बहुत सारे मूड्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे जॉनरा होते हैं कहानियों के, और सबसे बड़ी बात यह है कि थिएटर में दर्शकों और कलाकारों का एक डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, जो कि फिल्म में नहीं होता है। फिल्म
2: वो सबसे बड़ी बात वो है
3: जी,
2: तो दोनों के कलाकारों के लिए भी है और जो ऑडियंस है उसके लिए भी है, जो आप लाइव थिएटर आप हाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं
3: जी। इसीलिए क्योंकि फिल्में देखिए कोई 100-150 साल, कितने अभी 150 साल नहीं हुए से बनना शुरू हुई, और थिएटर तो हजारों सालों का एक माध्यम है, किसी अलग अलग रूप में चलता था और इसीलिए अभी तक जीवित है, और इसीलिए लोगों को जो एक उसमें आनंद मिलता है वो फिल्मों से अलग है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट हाँ। जो कॉन्टेक्ट है एकदम मिलता है एनर्जी ऑडियंस को और कलाकारों को आपस में, तो वो एक, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स वी लाइक कनेक्शन,
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: हमें कनेक्शन अच्छा लगता है।
2: तो इस बार आप एक नया नाटक लेके आई हैं, नाम है दशोरंग, उसके बारे में बताइए कि कितने शो हो रहे हैं इसके।
3: जी, दशोरंग के 3 शो हो रहे हैं। सबसे पहला शो कैनबरा में हो रहा है अगले शनिवार को 19 सितंबर को शाम 3 से 5 बजे, और वो शो जो है वो और भी हमारे लिए विशेष है, स्पेशल है, क्योंकि वो शो भारतीय उच्चायुक्त इंडियन हाई कमीशन के बैनर के अंदर हो रहा है, और वहां पे हम ये हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कर रहे हैं ये नाटक, क्योंकि हिंदी दिवस इस बार सोमवार को पड़ रहा है, तो किसी वो वीकेंड पे ही करना था हमको, तो इसलिए हमें 19 सितंबर का हमें मौका मिला, और भारतीय उच्चायुक्त के साथ मिलके हम कर रहे हैं, और उनकी हमें मतलब उन्हीं के बैनर के नीचे है ये, तो ये हमारे लिए बहुत ही खास है, और क्योंकि ये नाटक हिंदी में है, और विविधा आर्ट्स की स्थापना भी इसी उद्देश्य से हुई थी, क्योंकि कैनबरा में कोई हिंदी थिएटर नहीं था उस समय, जिस समय मैंने ये शुरू किया विविधा आर्ट्स, तो यही बातचीत हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा है रेडियो मनपसंद का, कैनबरा का जो रेडियो है
2: जी।
3: तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया और ये हिंदी और आज बहुत ही खुशी हो रही है इस बात पे कि 10वीं वर्षगांठ हम हिंदी दिवस पे ही कर रहे हैं और इंडियन हाई कमीशन के साथ कर रहे हैं।
2: हिंदी दिवस पे लोगों को नाटक देखने को मिलता है और अच्छी अच्छी बात क्या हो सकती है
3: जी।
2: और शो सिडनी में भी है
3: जी, और सिडनी में दो शो हो रहे हैं 26 सितंबर को, तो अगले से अगला शनिवार, तो जैसे कैनबरा के बाद सिडनी में दो शो हैं, वो शो हो रहे हैं नाइडा में द प्ले हाउस थिएटर। तो नाइडा में एक प्ले करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि चलो 10वीं वर्षगांठ हमारे लिए यादगार है। उससे पहले हम कई थिएटर्स में प्लेस कर चुके हैं लेकिन इस बार द प्ले हाउस थिएटर में है और एक शो है 2 बजे जो 2 से 5, मतलब फुल शो जो नाटक है वो मैक्सिमम 1.5 घंटे का है
2: जी,
3: 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में। और बस फिर उसके बाद मतलब जैसे लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो पहला शो है समझे 2 से 4:30 और फिर उसके बाद दूसरा शो है 6 बजे से 7:30।
2: तो लोग टिकट लेना चाहें तो कैसे मतलब ले सकते हैं, गूगल पे सर्च करें?
3: जी जी बिल्कुल, गूगल पे भी है क्योंकि वो टिकट उनकी वो कर रहे हैं जो
2: डिस्ट्रीब्यूशन
3: टिकटिंग है उनके उनके जरिए है हाँ। उनके माध्यम से है, तो अगर लोग सिर्फ टिकट एक भी उसमें टाइप करेंगे गूगल में तो उनको हमारा पोस्टर टिकट लिंक वहां पे मिल जाएगा। वैसे हमारे सभी साथी कलाकार जो हैं वो सोशल मीडिया पे हैं, अगर कोई जानकारी हो कोई रेडियो दर्पण को भी फोन करके अगर नंबर लेना चाहें तो
2: जी,
3: हम मुझे आई एम श्योर कि हम उनको जानकारी दे सकते हैं टिकट के बारे में
2: हाँ। अच्छा तो ज्योत्सना जी थोड़ा सा हम एक रहस्य बना हुआ है कि क्या देखने को मिलेगा, पर एक रेखा चित्र हमें बताइए कि जो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दर्शक
3: जी। मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं बिना कहानी बताए क्योंकि एक कहानी तो है, क्योंकि नाटक तो एक कहानी ही है ना
2: जी,
3: एक कहानी को बताना
2: जी।
3: तो नाटक उस कहानी में लोग दर्शकों को बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स, हंसी, कुछ मतलब मेरा एक वो रहता है कि मनोरंजन तो होना ही चाहिए क्योंकि लोग अपने घर से आए हैं, अपना कीमती समय निकाल के वो आए, तो उनको उस समय जो उन्होंने बिताया है उसमें उनको फुल एंजॉयमेंट, उनको मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, और आनंद के साथ साथ कोई पर्पस भी है क्योंकि वो भी मेरा एक हर मेरी हर कहानी का कुछ देयर इज सम मैसेज, कुछ उसके अंदर उद्देश्य भी होता है। तो बस वो सब कुछ मिला के समझिए कि हमने एक जैसे बुना है, एक कई रंगों और कई धागों के साथ मिलके एक ऐसी कहानी बुनी है जिसमें लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे।
2: और ये नाटक हिंदी में है
3: जी, ये नाटक हिंदी में है
2: जी। अच्छा, मैं इंडिया से हम लोग आते हैं इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया में और साथ में अपना टैलेंट लेके आते हैं कुछ ना कुछ
3: जी,
2: तो नाटक का भी अभिनय का भी टैलेंट है और टैलेंट को वीजा नहीं लगता, आदमी को वीजा लगता है
3: जी जी जी बिल्कुल
2: हाँ। तो ये टैलेंट जगह जगह बिखरता है, तो इसमें जो आपके कलाकार हैं कुछ लोग सिडनी से भी हैं, कुछ कैनबरा से भी हैं
3: जी जी जी बिल्कुल हाँ। ये बहुत बड़ी बात है और

0: डिफरेंट रूप देखने को मिलेगा लोगों को, एक चैलेंजिंग रोल है। मैं समझती हूँ कि काफी डिफरेंट है जो अभी आपने अब तक पहले आपने किए हैं, तो आप खुद जान सकते हैं कि कितनी मेहनत और कितनी कमिटमेंट चाहिए।
1: जी
0: तो सभी कलाकार इतनी मेहनत करते हैं, और मतलब कैनबरा से रिहर्सल्स के लिए यहाँ आना सेम डे पे, मतलब ऑलमोस्ट 8 घंटे की ड्राइव हो जाती है उनके लिए, कि रास्ते में जस्ट थोड़ा रुके या कुछ भी, तो 3.5 घंटे की तो सीधा ही ड्राइव है। तो 7 घंटे 8 घंटे ड्राइव करके आना, और फिर
1: जी
0: पूरी रिहर्सल में पूरी मेहनत करना। कल
1: जी जी
0: हम लोगों ने 10 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक रिहर्सल किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो मेहनत जो कलाकारों की है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो स्टेज पे आना चाहते हैं, वो इसलिए आना चाहते हैं कि उनका एक पैशन है कनेक्शन के लिए, ऑडियंस के लिए। नहीं तो कई चीजें हैं आजकल करने के लिए, तो ये अपने दर्शकों के लिए ही वो इतनी मेहनत करते हैं।
1: तो दर्शकों, हम आपको एक बार फिर बता दें, दशो रंग जो नाटक हो रहा है वो विविधा आर्ट्स के बैनर में हो रहा है, और इसके 3 शो हैं। एक शो है कैनबरा में, वो है 19 तारीख को, और 2 शो हैं सिडनी में, वो हैं 26 को। स्थान है नाइडा सिडनी में, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस वेन्यू माना जाता है, और इसके टिकट के लिए आप टिकटक के थ्रू ले सकते हैं, या आप गूगल कर सकते हैं टिकटक। तो जोशना जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने नया नाटक के लिए, और सिडनी वाले चाहेंगे कि आप हर साल इसी तरह नए नए नाटक लेके आएं और हमको मनोरंजन भी दें और हमारे थॉट्स को प्रवोक करें।
0: थैंक यू सो मच अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। और सभी लोगों से, सुनने वालों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज आइए, देखिए, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत अच्छा शो होने वाला है। आप टिकट खरीदिए और प्लीज आइए जी।
1: और आज के
0: तो
1: कार्यक्रम में
0: थैंक
1: हम एक पहेली रन कर रहे हैं, जिसके
0: जी
1: विजेता को 2 टिकट मिलेंगे इस नाटक के। हाँ,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो पहेली क्या होनी चाहिए योशना जी?
0: पहली मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो हम यही पूछ सकते हैं कि ये जो विविधा, जो आर्ट्स का जो नाटक हो रहा है दशरंग, ये विविधा का कौन सा साल है?
1: हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये।
0: जी
1: तो दर्शकगण, ये नोट कर लें कि अगर आप इस सवाल का उत्तर दे सकें कि विविधा आर्ट्स कितने साल से यहाँ पे सक्रिय है सिडनी में, ये कौन सा साल है उनका, और अभी जय तक को 2 मिलेंगे 2 टिकट इस नाटक के।
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: बहुत धन
0: बिल्कुल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जोशना जी आपको, और बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू
0: थैंक यू सो मच अजय जी,
1: थैंक यू
0: थैंक यू।
1: थैंक यू थैंक तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आज हम सारे गीत लेके आए हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम के, और उनके बारे में एक आपको सुंदर सा किस्सा बताता हूँ। साल 1981 में जब निर्देशक के बालचंदर फिल्म एक दूजे के लिए बना रहे थे, तो संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाहते थे कि दक्षिण भारतीय नायक जो कि कमल हासन थे, उनके लिए कोई हिंदी गायक से गाना गवाया जाए। लेकिन बालचंदर साहब अड़ गए कि SPB ही गाएंगे, यानी SP बाला सुब्रमण्यम ही गाएंगे, ताकि किरदार में दक्षिण भारतीय लहजा जो है स्वाभाविक लगे। SPB सर काफ़ी हिचकिचा रहे थे। उसी दौरान स्टूडियो में महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब भी मौजूद थे। जब रफ़ी साहब ने SPB को घबराते हुए देखा, तो उन्होंने SPB के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम बहुत सुरीला गाते हो, बस बिना किसी डर के अपने स्वाभाविक आवाज में गाओ। रफी साहब के इस आशीर्वाद ने चमत्कार कर दिया। फिल्म का गाना तेरे मेरे बीच में सुपरहिट रहा, और अपने पहले ही हिंदी गाने के लिए SP बाला सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो आइए सुनते हैं वही खूबसूरत गीत।

0: गीत था फिल्म एक दूजे के लिए, बहुत ही हिट फिल्म थी और आशा करता हूँ ये गीत आपको पसंद आया होगा।
1: श्रोता, हम बात कर रहे हैं अचिन जैन जी से। अचिन जी के से हम सौर ऊर्जा के बारे में खास तौर पे बात कर रहे हैं। तो अचिन, एक शब्द सुनने में आता है सेमीकंडक्टर
2: जी,
1: जो पॉपुलर है, तो शायद बहुत लोग उसका मतलब नहीं जानते
2: जी।
1: तो बताइए सेमीकंडक्टर होता क्या है
2: जी। तो सेमीकंडक्टर को अगर हम ब्रेक करें, सेमी और कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। जैसे मेटल है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है, तो मेटल की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि वो कंडक्ट करता है बिजली को, पर थोड़ी रेजिस्टेंस के साथ करता है। सेमीकंडक्टर्स में एक खास बात ये होती है कि उनमें एक बैंड गैप होता है, जिसका बहुत सिंपल शब्द में हम बात करें तो, जब इस सोलर की हम बात करें तो वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। जो मेटल है, मेटल ज़्यादातर रिफ्लेक्ट कर देता है सोलर एनर्जी को, सनलाइट को, मतलब सनलाइट को मेटल रिफ्लेक्ट करता है और सेमीकंडक्टर एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
1: तो फिर सेमीकंडक्टर जो है, मतलब दुनिया के कुछ देश हैं जिनके पास मोनोपोली है बनाने की, मतलब ये कही है कि वहाँ ज़्यादा बनते हैं, ताइवान में शायद ज़्यादा बनते हैं।
2: हाँ, ज़्यादातर जो सोलर पैनल्स के